अक्सम अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है। लुक ये मेरा अक्सम अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फूल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फूल है। अरे शादी

अरे ताजमहल बनवाना शाहजहां की भूल है, उसके पास पैसा अपने हाथ में तो फूल है। तूने गुस्से में फोन मेरा काटा, तो आशिक सरेंडर हुए।